0: बार बार कर जड़ कर सविनय कर उपकार साध संग मई देवनी तो परम गुरु दाता कृपा सिंधु सम्राट पुरुषादि अनादि अपर त्रोमी पवित्र आमी पवित्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु रवे परम ब्रह्म तस्म सो चितांजन तस्म सो श्री गुरु रवे नमो नमो
1: वंदे पुरुषोत्तम वंदे लोकोत्तम वंदे जीवनां राधाष्टमी स्वामी कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर दया दया कर पिता गुरुदेव राधाष्टमी जय गुरु राधाष्टमी जय गुरु राधाष्टमी जय गुरु।